ऐश्वर्यमुक्तोलयी शोभे अक्षर साथ सुंदर छवि लावण्य तेजोमयी कर्ता दिव्य सदा रहे प्रगट जे साकार सर्वोपरि सहजानंद कृपालु ने नित्य नमो सर्वावतारी हरि। श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज नी जय।

स्वामी नारायण भगवान नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज नी जय। भगत जी महाराज नी जय। शास्त्री जी महाराज नी जय। योगी जी महाराज नी जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज नी जय। दिल्ली अक्षरधाम महोत्सव नी जय। सब साथे मळीने आपणे हाथ जोड़ी स्वामी श्री स्मृति साथे श्लोक गान करीए।